0: जन्मा है जिस मिट्टी ने, अब तो उसके हो जाओ। कहां तक आस्तीनों में तुम्हारा जहर पालेंगे, कहां तक भाईचारा हम अकेले ही संभालेंगे। कबूतर शांति के मजबूर हैं अब्बास बनने को, नजर डालो हमारी बेटियों पर, नोश डालेंगे। कि जैसे भट्टियों में ढल रही हो धार शस्त्रों की, ढली है रण की ज्वाला में जवानी आर्य पुत्रों की। है अभिमन्यु के वंशज हम, पिया है शौर्य घुट्टी में, अगर हिम्मत है आ जाओ भरो ये आग मुट्ठी में।
1: Broadcasting from Richmond, Virginia.
2: It's your pound cake
1: on Lemon Radio.
3: Broadcasting from Richmond, Virginia.
2: It's your pound cake
1: on Lemon Radio.